ही मेरा रब, तू ही मेरा सब, जो आके मैनू छू वो हवावा विच तू, दिल विच तू, साहा विच तू, मैं जिथों मिलूंगा ना रहा विच तू, इको आ दुआ मेरी उस रब ने।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदा

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Awesome. Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour. Song of the
2: hour. Song. Kya baat hai sir? Kya par ye baat hai? Awesome.

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

देखिए, तकदीरों का शुक्र तो मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे आपसे सुबह सुबह मिलने का जो मौका मिला है, ये छोरी कशिश, आपकी जो कूल सी छोरी है कशिश, ये आपके लिए बिंदास मॉर्निंग शो लेकर आ गई है, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आज बहुत सारी अलग अलग टाइप की बातचीत हम करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी देर में हम जो है मौसम के मामले पे बात करेंगे, क्योंकि आज सुबह जब मैं अपने घर से यहाँ पर आ रही थी, तब मैंने देखा कि यार बाहर तो ठंडक लग रही है, फिर मैंने जब अपनी एसी वाली गाड़ी से हाथ बाहर निकाला तो पता चला कि आराम से 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, एंड अभी तक मैंने जो है अपना वेदर ऐप देखा भी नहीं है। सो इस पर डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों की जो है मॉर्निंग कैसी रही, आज का क्या प्लान है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग कुछ कह दीजिए मुझे 3311063 पर आकर। बाकी आपके लिए जो है इवेंट वाले बहुत सारे टिकट्स हैं, हम अलग अलग कॉन्टेस्ट खेलने वाले हैं, सो बस आपको उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाकर स्टे ट्यून रहना है। फिलहाल आपकी सुबह की शुरुआत जो है एक एनर्जेटिक नंबर से जो है वो करते हैं। सो लाल लाल कलर ची बांगड़ी द बैंगल सॉन्ग आ रहा है संजू राठौड़ की आवाज में आपके रेडियो सेट्स पर। सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आप कशिश के साथ एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास। La la

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में,
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: लुका छुपी मूवी का ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो आलम पर. मैं हूँ आपकी कशिश. हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई है, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. देखिए, टेम्परेचर में ऐसा बदलाव होगा ये मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ठीक है, थोड़ा सा ये मौसम धोखा सा दे रहा है, लेकिन इतना भी क्या हो सा है. तो 30 डिग्री सेल्सियस जो है अभी इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है, और यही टेम्परेचर जो है आजकल लोएस्ट टेम्परेचर है. वापस हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो 40 पर पहुंच चुका है. एंड मुझे यार 29 पे आ गए थे ना, तो खुशी हो रही थी कि चलो 20s में आ गए, वापस 30 पे पहुंच गए. कोई बात नहीं यार, देखो उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, और मौसम ही तो है जिसे उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है. मतलब मौसम और मेरे मार्क्स जो है एग्जाम में यही थे जिनमें उतार चढ़ाव बहुत होता था. और वैसे तो मौसम देखो हमें थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहा है, मेरे मार्कशीट पे तो बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं होती थी. पर कोई बात नहीं, जितना बच्चा पार्टी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आपको जो है अपने लिए बहुत ज्यादा काम करना है, ताकि आप जो है हर इंसान से कॉन्फिडेंस से बात कर पाओ. बाकी कॉन्फिडेंस से मुझे याद आया कि थोड़ी सी देर में हम आज के कोट ऑफ द डे की भी बात करने वाले हैं. सो जरा आप स्टे ट्यून्ड रहिए एंड जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए अगर आपके पास कोई कोट है तो, वरना हाय हेलो गुड मॉर्निंग बस आपकी कशिश में जो है ऊर्जा भरने के लिए, एनर्जी भरने के लिए काफी होगा. 3311063 इज द नंबर. जल्दी से अपना मैसेज जो है टाइप करके मुझे भेज दो. बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आरआर आपकी रेडियो सेट्स पर, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो ये गाना आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर, गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स, क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
1: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स, सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
2: सफारी, वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

इस गाने की लिरिक्स जो है वो रिपीट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे शकीरावे इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आया, बट कोई बात नहीं, वाइब है गाने में तो इसलिए हमने इंजॉय कर लिया है। हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है वो आ चुकी है यहाँ पर आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को हम बिंदास बना रहे हैं। अब देखो यार, आपकी कशिश कूल है लेकिन कई बार अनकूल से थॉट्स जो है वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं। अब जैसे यार पिछले फ्राइडे ही हुआ, मुझे कहीं बाहर जाना था लेकिन मैं जो है अपना बेस्ट नहीं दिख पा रही थी। मेरे जो बाल थे वो एकदम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मेरी स्किन जो थी वो बेस्ट नहीं दिख रही थी, तो मुझे जो है अच्छा नहीं लग रहा था। एंड जिस इवेंट में मुझे जाना था, जहां मुझे बाहर जाना था, वहां पे बहुत ही ज्यादा अदा खूबसूरत माशा अल्लाह लोग आने वाले थे। एंड मैं जो है जनरली किसी और से जो है ऐसे इंटिमिडेटेड फील नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं परफेक्ट नहीं हूँ, शायद मैं दिख परफेक्ट नहीं रहा हूँ। सो कई बार हमें ऐसा फील होता है। तो जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं जो यू नो सेल्फ डेप्रिकेट वाले जोन में रहते हैं कि यार खुद को खुद ही जो है आप रोस्ट कर लेते हो, खुद ही को खुद ही ज्ञान दे देते हो कि यार तुम परफेक्ट नहीं हो, उनके लिए आज जो है मैंने सोशल मीडिया पर एक बात पढ़ी थी कि नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। सो अगर आपको किसी से जो है ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो इनसे इन्फीरियर हूँ, सो ये आप खुद सोच रहे हैं, आप खुद बोल रहे हैं खुद को, वो नहीं बोल रहे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद को प्रायोरिटी दें, खुद की तारीफ करें। कोई और आपकी तारीफ करे या ना करे, आपको मिरर के सामने खड़े होना है और खुद की तारीफ करनी है। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, एंड दूसरा आपको जो है जो लोग आपको आपकी लाइफ में नेगेटिविटी घोलने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बातों से आपको बहुत कम फर्क पड़ेगा। सो एक बार ही करके देखो, बाकी और बहुत सारी पॉजिटिविटी वाली बातें जो है अभी हमें करनी है। आके जो है आप सबके मैसेजेस पढ़ने वाली हूँ मैं, तो 3311063 पर आकर फटाक से एक प्यारा प्यारा मैसेज जो है वो मुझे लिख दो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी आपसे थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड और कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
1: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC अप्लाई.

0: आड़ी संधू की आवाज में ये सोच गाना जो है आपने इंजॉय किया, और ये ओरिजिनल वाला है, बाद में एयरलिफ्ट मूवी में जो है यूज हुआ था। मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग। हाँ जी, आपकी ये जो कूल सी छोरी है ये आ गई है आपके दिन को और ज्यादा जो है बिंदास बनाने के लिए। अब आइए चलिए आप सबके जो है मैसेजेस जरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें मैसेज आया है जुल्फी जी का। गुड मॉर्निंग जुल्फी जी, आपने फिर से एक बहुत ही प्यारी सी फोटो भेजी है। उसके बाद अबरार जी ने जो है एक बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेजा है फ्लार के साथ। एंड उसके बाद शशिकांत पाडल जी ने भी एक बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है एंड उस पर एक बहुत ही अच्छा सा कोट लिखा है, द रिवर नेवर आर्ग्यूज इट विद द रॉक्स इट फाइंड्स अनदर वे। ओ माय गॉड, सुबह सुबह के लिए बहुत हैवी मोटिवेशन है। एंड उसके बाद निजामुल्ला जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग, द बेस्ट डेज आर द वंस दैट स्टार्ट विथ नोइंग समवन आउट देयर इज रूटिंग फॉर यू, कंसिडर दिस Your daily reminder that I am every morning. Thank you so much. And अभी इदरीस जी ने जो है वो हमें मैसेज किया, एक बहुत ही प्यारी सी फोटो जो है वो भेजी है एंड उसके बाद दिखा है, Have a good day. इदरीस जी, थैंक यू सो मच। संजू जी ने लिखा है, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नो मैटर वॉट नॉक्स यू डाउन इन द लाइफ, गेट बैक अप, कीप गोइंग, नेवर गिव अप, ग्रेट ब्लेसिंग are a result of good perseverance. बाबरे, इतना सारे मोटिवेशनल वर्ड्स संधू जी आपने तो एक साथ ही लिख दिए। मेरे में इतना नहीं है कैपेसिटी कि मैं इतना सारा मोटिवेशन जो है वो एक साथ झेल सकूं। वैसे देखिए इसी मोटिवेशन की लहर के साथ आगे बढ़ते हैं। ऑल द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर टॉक्सिक मूवी का ये ट्रैक एंजॉय कीजिए। बाकी थोड़ी सी देर में आने के बाद मैं जो है आपसे पूछूंगी आज ब्लैकबोर्ड स्टोरी वाला सवाल, और ये देखेंगे कि आप पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नौवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश से कितने ज्यादा स्मार्ट हैं। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the Hour. Yeah,

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

सब सही है ब्रो। देखो यार, अगर लाइफ में कुछ ठीक ना चल रहा हो ना, तो भी बस सब सही है ब्रो कह के आगे बढ़ जाओ, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक फील होने लग जाएगा। लेकिन एक चीज है जिसको मैं सही है ब्रो नहीं कह सकती, और वो है आपके गलत आंसर्स। सो ब्लैक बोर्ड स्टोरी का वक्त हो चला है, जहां पर मैं आपसे करने वाली हूँ एक सवाल, है ना, आपको देना है उसका सिंपल सा जवाब, मतलब सिंपल से सवाल का सिंपल से जवाब। और जितने भी बच्चा पार्टी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, स्पेशली ये सवाल आपके लिए है, बिकॉज ये जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। सो मुझे जो है आपको मैसेज करना है 3311063 पर, और ये बताना है कि एम जी ये जो है किसका केमिकल नाम है, किसी का शॉर्ट फॉर्म है, कौन से एलिमेंट का, एम जी बताइए मुझे 3311063 पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूँ, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बना रही हूँ मैं 106.3 रेडियो ऑलिव पर। आप जल्दी से फोन उठाइए 3311063 पर, मुझे बताइए कि एम जी जो है किस केमिकल जो है एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, एम जी बताइए मुझे। कई लोग जो है गाड़ियों के नाम सोचने लग गए, नहीं एम जी बताइए मुझे 3311063। फिलहाल एक बहुत ही अम्यूजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कसूस के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मूवी का नाम इतना बड़ा है कि उसमें सारे एफर्ट चले गए, इसीलिए गाने को जो है रिक्रिएट करना पड़ा। विकी विद्या का वो वाला वीडियो देखिए, किसी टंग ट्विस्टर से कम नहीं है ये जो नाम है। वैसे मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आज ना मैंने ब्लैक बोर्ड स्टोरी में बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि एम जी जो है वो कौन से एलिमेंट का नाम है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे आंसर दिए हैं, एंड जितने लोगों ने आंसर दिए हैं उन सब के आंसर बिल्कुल ठीक है। तो जैसे सुदेव कहते थे ना कि यार आप पांचवीं छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं और कशिश थे, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे अवीज खान जी ने आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद अबरार जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। इदरीस जी ने दो आंसर दिए हैं मुझे कि इनमें से कोई ना कोई तो ठीक होगा ही। उसके बाद जो है मुझे अग्निवेश का एक ऑडियो नोट आया है, एंड उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही है। सो इन्होंने क्या कहा है ऑडियो नोट में वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर बाद, क्योंकि उन्होंने फिर आंसर बताया और उसके बेनिफिट्स भी बताए। सो मुझे लगता है कि आप सबको एक और मौका देना चाहिए। सो 3311063 पर मुझे मैसेज करके ये बताओ कि एम जी जो है वो कौन से केमिकल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है, छोटा नाम है। सो मुझे बताइए, आप लोगों के पास एक और मौका है 3311063 पर। बाकी जितने लोगों के मैंने नाम लिया उन सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो कंग्रेचुलेशंस, आप सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं एंड जबरदस्त हैं। इसीलिए एक जबरदस्त हिट गाना जो है आपके रेडियो सेट पर, जरा इसे इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। 3311063 इज द नंबर, जल्दी से इस नंबर पे जो है अपना आंसर मुझे भेज दो।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
3: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

कभी आपने सुनी थी चौहान को लाइव? सुना है यार, मैंने सुना है और मुझे पता है कि कितनी ज्यादा एपिक वाली एनर्जी जो है वो इनके कॉन्सर्ट में होती है। सो जो हम रेडियो पे इनके गाने सुन के इतना झूमते हैं, तो मैं लाइव सुन के कितना झूमी होंगी। आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है यहाँ पर आ चुकी है आपके लिए लेकर बिंदास मॉर्निंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने इन नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, थोड़ी सी देर पहले आपसे एक बहुत ही औसौंदो सवाल मैंने पूछा था कि MG जो है वो किसका शॉर्ट जो है फॉर्म है, किस एलिमेंट का, केमिकल एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। सो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिल्कुल सही सही आंसर दिया है। एंड अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूँ तो मुझे संतोष जी एंड योगिनी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एंड आंसर है मैग्नीशियम। हाँ जी, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला जो है वो MG है। एंड अगर मैं कुछ फैक्ट्स की बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 12 है एंड ये एक एल्कलाइन टाइप होता है। एंड अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम की, तो जैसे हमें हमारे एक लिसनर अग्निवेश ने जो है ऑडियो नोट में बताया कि नींद के लिए काफी बेनिफिशियल होता है। सो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो गेट योरसेल्फ चेक्ड, हो सकता है आपके बॉडी में मैग्नीशियम की काफी कमी हो। सो एक बार अपनी बॉडी हेल्थ का, अपनी मैग्नीशियम का, अपने सभी मिनरल्स का जो है ध्यान रखें एंड डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही खाना जो है वो स्टार्ट करें। बेसिकली वैसे ग्रीन वेजीज में जैसे अग्निवेश ने बताया कि मैग्नीशियम बहुत होता है, सो आप वो कंज्यूम कीजिए। लेकिन कई बार जो है किसी यू नो मिनरल का आपकी बॉडी में ज्यादा होना भी नुकसानदायक हो सकता है। वो कहते हैं ना, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। यानी किसी चीज की अति जो है वो अच्छी नहीं होती है मेरे दोस्त। फिलहाल जो है एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना, यानी अति अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये इंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश जो है वो आ रही है थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून और कहते रहिए जियो बिंदास।

गाने का नाम काफी है और गाने का नाम काफी नहीं है, मुसाफिर कैफे मूवीज कितना बुरा जोक मारा मैंने. ओके, मुसाफिर कैफे सीरीज से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो और पर मैं हूँ आपकी कशिश. हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी कशिश जो है आ गई है आपकी मॉर्निंग्स को बिंदास बनाने के लिए. अब देखिए यार, पहले ना मैं वो इंसान थी जो कभी भी लोगों को 24 घंटे जो है वीडियो कॉल पे देखती थी ना, तो यही बोलती थी कि यार इतनी क्या बात करनी होती है इन लोगों को, मतलब अपने घर से ही तो दूर है, इतना मम्मी पापा को पर हर मिनट की इन्फॉर्मेशन क्यों देनी है, पूरे टाइम ये मम्मी से क्यों बात कर रहे हैं. सो मुझे ना काफ़ी ऐसा लगता था कि यार इतना तो मैं नहीं रह सकती अपने पेरेंट्स, मतलब मैं उनके साथ सेम घर में रहती थी ना, तो मुझे खाने को मिलता था उनके साथ, मुझे टाइम स्पेंड करने को मिलता था, तो मैं सोचती थी यार वीडियो कॉल क्यों करता है कोई अपने पेरेंट्स इतना ज्यादा. लेकिन फिर मेरा आना हुआ कतर है ना, अब मैं भी उसी इंसान में से हूँ जो 24 घंटे में से एटलीस्ट 22 घंटे 22 आवर्स जो है वो अपने मॉम के साथ जो है कॉल पे रहती है हर छोटी चीज के लिए. मम्मी आज ये बनाया है, मम्मी ये कैसे बनेगा, मम्मी ये खरीद लूं, मम्मी ये अच्छा लग रहा है जनरली. ओके, सो एक बंदा है जिसने अपनी मम्मी को मिस करते हुए जो है ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं 24 घंटे वीडियो कॉल की फैसिलिटी जो है वो चालू कर देते हैं. तो इन्होंने अपने डाइनिंग टेबल पे एक ऐसा सेटअप बना दिया जिससे मम्मी को जो है फोन उठाना भी नहीं पड़ेगा, फोन लगाना भी नहीं पड़ेगा, 24 घंटे जो है उनका वीडियो कॉल चल सकता है. हाँ जी, हाउ थॉटफुल ब्रो. बार बार मम्मी कॉल कर रही है, आप उठा नहीं पा रहे हो, फिर आपको गिल्ट हो रहा है कि यार मम्मी इतनी दूर है, कहीं कुछ परेशानी तो नहीं होगी, और मम्मी ने ये पूछने के लिए फोन किया है कि अगली बार जब आओगे तो नींबू का अचार खाओगे या आम का अचार खाओगे. सो ऐसी चीजों से बचने के लिए 24 घंटे का जो है वीडियो कॉल वाला जो है वो ऑन है, एंड मुझे अच्छा आइडिया लगता है ये. बाकी इस पे डिटेल में बात हम कर सकते हैं थोड़ी सी देर में, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए आपके थॉट्स इस पे 3311063 पर. फिलहाल मेरे ढोलना गाना अरिजीत सिंह की आवाज में आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
2: फुटवेयर, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स।
1: क्लॉक इज टिकिंग, ये यूनिट जलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप, स्कोर बिग। आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
5: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
4: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
5: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

0: Third-party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tyre change, fuel delivery, battery boost and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-5055 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind.
1: TNC घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ हैं सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर.
1: क्या? कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर.
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है.
3: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
4: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
0: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
0: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. टीएनसी अप्लाई.

0: जबरिया जोड़ी मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल ओवर। मैं हूँ आपकी कशिश,
1: ये छोरी कशिश,
0: और आपकी एक कूल सी छोरी कशिश जो है वो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग को जो है बिंदास बनाने का बीड़ो यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, आज से जो है बहुत साल पहले, मैं काउंट नहीं कर पा रही हूँ कितने साल पहले, लेकिन 2010 में जो है आज ही के दिन इंस्टाग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था, एंड हम सबके एडिक्शन का उसके बाद वो कारण बन गया है। मतलब इस दुनिया में अगर मेरे मम्मी पापा के लिए कोई भी सबसे मेजर प्रॉब्लम है तो वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, वो है इंस्टाग्राम। तुम ये गलत बातें कहाँ से सीख रहे हो? इंस्टाग्राम से। तुम मुंह चलाना कहाँ से सीख रहे हो? इंस्टाग्राम से। तुम्हारा वेट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो। हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इंस्टाग्राम देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ बच्चों के लिए जो है सबसे मेजर चीज इंस्टाग्राम है आजकल। मतलब अगर कुछ भी नया सीखना है, करना है, तो हम इंस्टाग्राम से देखते हैं। मतलब मेरी वोकैबुलरी बदल चुकी है। मतलब मैं आधे से ज्यादा टाइम सिर्फ ये बोलती रहती हूँ कि अरे मैंने पता इंस्टाग्राम पे देखा, अरे मैंने इंस्टाग्राम से ये निकाला है, अरे मुझे ना कल इंस्टाग्राम से पता चला, अच्छा मैंने ना इंस्टाग्राम पर देखा था। इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम। मतलब अगर इंस्टाग्राम जो है वो वर्ड बोलने में मुझे पैसे मिल रहे होते ना, तो इस वक्त मैं बहुत ज्यादा अमीर इंसान होती। वैसे इंस्टाग्राम जो है जितनी हम बुराई कर रहे हैं उतना कुछ बुरा नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम से सीरियसली इतनी सारे करियर ऑप्शंस जो है वो निकल गया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिल रही है, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हो, साउंड इंजीनियर्स हो, चाहे वो ब्रांड्स को क्यों ना एडवर्टाइजिंग का फायदा मिल रहा हो। सो अगर मैं बात करूँ एडवर्टाइजिंग के लिहाज से, तो इंस्टाग्राम अभी सबसे बड़ा, सबसे मेजर एक प्लेटफॉर्म जो है वो उभरा है, क्योंकि ये जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है बिजनेस से कंज्यूमर को। कि तो क्या है, ये अब बीच के जितने लोग थे वो धीरे धीरे करके गायब होते जा रहे हैं, एंड कंटेंट से अच्छे तरीके से जो है, मतलब बोरिंग तरीके को टाटा बाय बाय बोल के जो है इंस्टाग्राम से लोग जो है अब जुड़ रहे हैं, एंड दैट्स अ नाइस थिंग आई फील, है ना। लेकिन कई बार इंस्टाग्राम जो है वो खर्चा भी बहुत करा देता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती हैं जो हमें एक्चुअल में लेनी नहीं होती हैं, लेकिन इतनी एस्थेटिक, इतनी प्यारी दिख रही होती हैं कि हम ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऐसे पेजेस को फॉलो करो जो आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे। तो जल्दी से जाओ रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, पॉडकास्ट आपको मिलेंगे, फन कॉन्टेंट आपको मिलेगा, और डेली डोज ऑफ एंटरटेनमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो जल्दी से जाके रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो। और बाकी इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई आज यादों की बात कर रहे हैं, सो फनी इंस्टाग्राम थिंग्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इंस्टाग्राम के बारे में हम जब सोचते हैं तो फनी यूजर नेम्स के बारे में सोचते हैं, फनी बायो के बारे में सोचते हैं। सो चलिए एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव रखते हैं, आपको इंस्टाग्राम के बारे में सबसे फनीएस्ट चीज जो है वो क्या लगती है, इस पर हम बात कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट इंस्टाग्राम का, अगर मैं स्टोरी को जानना चाहूँ कि यार इंस्टाग्राम हमने तो ऐसे चालू किया था या मेरे साथ तो ये हुआ, सो प्रोस्पेक्टिव आपके लिए ओपन है, आपको जो कहना है आप वो कह सकते हैं मुझसे 3311063 पर। थोड़ी सी देर में फनीएस्ट यूजर नेम्स जो है वो मैं लेकर आऊंगी आपके लिए, सो आप भी कुछ ऐड कर सकते हैं वैसे उसमें। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आपकी रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ा कर ये गाना एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: See what I bought today. I bought a tomato plant, a lemon plant and a mango plant.
2: A mango plant? Isn't that a mango tree? Anyway, why is everything so green? Where did you get all this?
3: Arre, we went shopping at Safari, didn't we? Safari has launched the Go Green, Grow Green promotion. He got really excited when he saw all the plants and arrangements there.
1: Yeah, it's so cool, Mom. There's a lot of flowering plants too. I picked out the best ones.
3: He selected each one himself. There are plenty more. We can go together sometime.
4: A wide variety of vegetable and fruit saplings, medicinal and ornamental plants, indoor plants, various seeds, plus garden tools, fertilizers and everything else needed for gardening. All arranged at Safari starting October 5th as part of the Go Green, Grow Green campaign.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
7: इन एसोसिएशन विद
6: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC

ऑफकोर्स जी, बिंदास वाला गाना बिंदास मॉर्निंग में आपकी इस बिंदास कशिश ने जो है आपको सुनाया। गुड मॉर्निंग, आपकी कूल सी छोरी आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई 106.3 रेडियो ऑल इज देयर। अब देखिए यार, इंस्टाग्राम पे ये वाला जो गाना है काफी ज्यादा वायरल हो गया था। बीच में काफी सारे लोग जो है इसमें ट्रांजिशन वीडियोस बना रहे थे एंड काफी मजा आ रहा था। लेकिन अब जो है इंस्टाग्राम का आज है हैप्पी वाला बर्थडे, तो हम इंस्टाग्राम के बारे में अच्छी बातें तो देखो कर ही रहे हैं, लेकिन ये बातें भी कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है इंस्टाग्राम के बारे में जो आपको बहुत ज्यादा बहुत बहुत बहुत ज्यादा इरिटेट करती है। एंड वो मेरे लिए एक चीज ये है इंस्टाग्राम को लेके कि यार इंस्टाग्राम इंटेलिजेंट बहुत है, और ये ना बिल्कुल हमारी पड़ोस वाली आंटियों की तरह है। एंड ये ना पूरे टाइम हम पे नजर रखता है और हमें बताता है कि यार अच्छा आज ये जो है बहुत खुश है, इसको जो है मैं अभी बताता हूँ कि यार इतना खुश होगी ना तो फिर रोएगी, ऐसे ऐसे करता है मेरे साथ। उसके बाद फिर अगर मैं सैड हूं तो फिर मुझे जो है और ज्यादा सैड करेगा। यानी इंस्टाग्राम पूरी तरीके से इस कोशिश में लग जाता है कि मेरा मूड अच्छा हो ही ना पाए। एंड किसी दिन अगर मेरा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है ऑलरेडी, तो फिर ये ना उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाल के मुझे दे ही देता है। सो इंस्टाग्राम मुझे इसलिए जो है थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार इतना इंटेलिजेंट मत हो, जो मैं देखना चाहूं मुझे सिर्फ वो दिखाया करो, मुझे एक्स्ट्रा मोटिवेशन की कोई भी जरूरत नहीं है। बाकी एक टाइम था जब हम जो है, अब तो खैर बहुत एस्थेटिक हो गए हैं, अगर मैं यूजर नेम्स की बात करूं या बायोस की बात करूं, लोग बहुत सोच समझ के लिखते हैं एंड AI से भी हेल्प ले लेते हैं। लेकिन पहले जो है इंस्टाग्राम जब शुरू हुआ था तब जो है लिखा जाता था कि बॉर्न ऑन दिस डे सेड हाय टू वर्ल्ड ऑन दिस डे। एक तो खराब इंग्लिश, ऊपर से हमें नहीं जानना है कि आपने वर्ल्ड को हाय कब कहा, आप केक मर्डर हैं, हमें नहीं सुनना है ये। सो ऐसे बहुत सारी फनी चीजें होती है। वैसे अगर मैं जो है बताऊं, भी कुछ टाइम पहले तक जो है एक अंडे की जो फोटो थी वो सबसे ज्यादा लाइक्ड फोटो थी इंस्टाग्राम पे। सोचो क्या बात है। वैसे इंस्टाग्राम जो है वो ये कहता है कि 38% ज्यादा चांसेस जो है आपके लाइक्स के और व्यूज के बढ़ जाते हैं अगर आपकी फोटो पे जो है किसी इंसान का चेहरा दिख रहा होता है तो। तो पता नहीं अंडे ने जो है इतनी लाइक्स कैसे पा लिए। कोई बात नहीं। सो इंस्टाग्राम को हैप्पी बर्थडे कहते हुए मुझे ऐसा लगता है कि एक अभी जो काफी वायरल हो रहा है गाना उस पर चलते हैं। लोग काफी प्यारे प्यारे ट्रांजिशंस बना रहे हैं अपने पार्टनर के इस गाने पे, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना उंगली मूवी से इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ। थोड़ी सी देर में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने क्या कहा है आपके लिए वो मैं बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Solid 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Festivities की planning, it's always quite overwhelming. But when it comes to planning your jewelry purchases, Malabar Gold and Diamonds काफी है. अब सिर्फ 25% pay करें and lock in your gold rate 8th November तक. Then if the price increases at the time of purchase, आप पा सकते हैं the booked rate. और अगर gold price drop होती है, you get the lower rate. है ना enough reasons to start the celebrations already? तो आज ही अपना price locked, gold secured कीजिए with Malabar Gold and
2: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ. सुनिए हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे. स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक. विजिट bima.com.qa. बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड. TNC apply.

बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आपने इंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ बिंदास मॉर्निंग. हाँ जी, आपकी कूल सी छोरी यहाँ पर आ चुकी है एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स ने कुछ ऐसे यू नो रीजंस बताए हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स जो है वो होते हैं. सो ताकि जितने भी लोग हैं, वैसे तो यहाँ का पे लोग जो है वो बड़ी अच्छी तरीके से ड्राइविंग करते हैं एंड क्योंकि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं तो बहुत कम ही ऐसी चीज़ें होती हैं. लेकिन कुछ छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो है सडन लेन चेंज आपको नहीं करनी है. आपको अपनी जो आगे जो लाइट है उसे हाई बीम पे नहीं रखना है एंड आपको ओवर स्पीडिंग जो है वो नहीं करनी है. ऐसी कुछ दो तीन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक्सीडेंट से खुद को और अपने साथ वाले जो लोग हैं जो आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हें भी सेफ रख पाएंगे. सो इसी बात के साथ ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आरआरएफ की रेडियो सेट पर जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए इसे आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: हालो धू विथ रेडियो ओलिव एंड A2Z इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग
2: दोहा वालों गेट रेडी टू ग्लो ग्लैम अप एंड ग्रो वी आर ब्रिंगिंग यू द अल्टीमेट फैशन फ्यूजन म्यूजिकल नाइट थ्रो ऑन योर ब्राइटेस्ट मोस्ट कलरफुल फेस्टिव एथनिक वेयर ग्रैब योर फेवरेट एक्सेसरीज एंड लेट्स लाइट अप द डांस फ्लोर
1: और अल्टीमेट म्यूजिक के लिए साथ होगी बॉलीवुड की सेंसेशनल स्टार इशिता विश्वकर्मा लाइव
2: गेट रेडी फॉर देसी बीट्स चटपटे स्ट्रीट फूड एंड फुल ऑन वाइब्स दिस फ्राइडे 9th अक्टूबर एट रीजेंसी हॉल
1: 6 PM ऑनवर्ड्स
2: बुक योर टिकट ऑन स्नूनू सिटी और फॉर मोर info call 3328-3393
3: Party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim-free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
3: इन एसोसिएशन विद
2: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

अमेजिंग वाला गाना आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑल एफएम में। हूँ आपकी कशिश, ये छोरी कशिश। हाँ जी, आपकी कौन सी छोरी कशिश आपके लिए जो है बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई, जहां पर आपकी बेसिक बोरिंग मॉर्निंग्स को जो है बिंदास बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी बीड़ा जो है मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, फेस्टिव सीजन आते ही अचानक से यू नो बॉडी में सेंसेशन होने लग जाती है डांस की, म्यूजिक की, फन की, एंड अलमारी में रखे हुए एथनिक कपड़े बोलने लगते हैं कि अब हमें भी निकाल लो, हमारी बारी आने वाली है। लेकिन ऐसे किसी भी नॉर्मल इवेंट पे जाकर उसे जो है वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ए हालो धूम, जहां पर इस फेस्टिव सीजन में आपको घूम घूम के डांस करने का, म्यूजिक एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि बॉलीवुड सेंसेशन इशिता विश्वकर्मा भी जो है वो हमें ज्वाइन करने वाली है, एंड चटपटे गाने विद चटपटे स्ट्रीट फूड आपको सब मिलने वाला है। सो कहो ए हालो रेडियो ऑल ओवर ए टू जी इवेंट्स के साथ। अब देखिए यार, इस फ्राइडे यानी 9th of October को ये इवेंट होने वाला है रेजेंसी हॉल में। शाम को 6:30 से हम शुरुआत जो है वो कर देंगे। बाकी अगर आपको इस इवेंट की टिकट जो है वो खरीदनी है तो स्नूनू से जो है आप टिकट्स खरीद सकते हैं। बाकी आज जो है आपको टिकट्स, कपल टिकट जीतने का जो है मौका मैं दे रही हूँ। सो बस आपको जो है, जो मैं म्यूजिक अब आपको सुनाऊंगी, ये म्यूजिक जो है वो सुनना है, गाना पहचानना है, और बस मुझे इस गाने की जो है मूवी का नाम बताना है। तो मुझे जल्दी से जो है बस इस गाने का नाम जो है वो आप बताइए 3311063 पर। जरा कान और ध्यान लगाकर सुनिए कि आखिर ये गाना जो है वो कौन सा है।

जल्दी बताइए, पहचान तो गए होंगे आप कि ये गाना कौन सा है। 3311063 पर मुझे बस ये बताइए कि ये गाने जो है, इस गाने का नाम क्या है, और अगर एक्ट्रेस बता देंगे तो एड ऑन हो जाएगा। बाकी विनर्स कौन है वो भी आपको पता चलेगा धीरे से। कल वाले विनर्स जो है वो भी अभी तक हमें नहीं पता चले हैं, सो वो भी आपको पता चलेंगे। लेकिन 3311063 पर फिलहाल जल्दी से कपल टिकट के लिए जो है, हमारे इवेंट की ए हालो धूम की टिकट के लिए जो है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि ये जो गाना है इसका नाम क्या है, एंड इसमें एक्ट्रेस जो है वो कौन सी परफॉर्म कर रही है। फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
5: इन एसोसिएशन विद
4: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लाइबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट बीमा.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

উদিত নারায়ণ জি কি আওয়াজ মে বিউটিফুল সো ট্র্যাক আপনি এনজয় কিয়া 106.3 রেডিও অল অফ আর ইয়ে চোরি কশিশ आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आई हूँ, जहाँ पर आपकी बेसिक मॉर्निंग को बिंदास बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने उठा रखी है अपने नाजुक कंधों पर। आप देखिए यार, हम बात कर रहे थे ए हालो ढोल इवेंट के बारे में जो इस फ्राइडे को होने वाला है, जहाँ पर हम बहुत सारा फन फॉलिक मस्ती और मजा करने वाले हैं। एंड बॉलीवुड सेंसेशन इशिता विश्वकर्मा जो है वो भी हमारे साथ होने वाली परफॉर्म करने के लिए लाइव, ताकि आपको चटपटे म्यूजिक और चटपटे स्ट्रीट फूड की बिल्कुल भी कमी ना हो। अब देखो यार, अगर आपको ये इवेंट यू तो अगर ज्वाइन करना है तो आप स्नूनू से जाकर जो है अपनी टिकट्स बुक कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है मौका दे रही हूं आपको एक कपल टिकट जीतने का। सो बस आपको जो है एक गाना पहचानना है और मुझे उस गाने का नाम बताना है और उस गाने में जो है परफॉर्म कर रही एक्ट्रेस का नाम बताना है। वैसे तो बहुत सारे आंसर ऑलरेडी मेरे पास आ चुके हैं जिनमें से कुछ सही भी हैं, लेकिन मुझे जो है समझ आया कि यार इन सब की बीट जो है वो बहुत सारे गानों की सिमिलर है, इसीलिए मैं एक हिंट ड्रॉप कर रही हूँ ताकि उन लोगों को भी समझ आ जाए जिनको थोड़ा सा यू नो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। सो पहले मैं हिंट दे देती हूँ कि इस मूवी में जो है रणबीर सिंह जो है वो हमें देखने को मिले हैं एंड एक्ट्रेस जो है वो उनके बहुत ही क्लोज है। सो 3311063 पर आप आंसर दे सकते हैं। जरा कान और ध्यान लगाकर एक और बार ये गाना जो है उसका चंक सुनिए और मुझे आंसर दीजिए।

0: बताइए जी 3311063 पर कि आखिर ये गाना जो है इसका नाम क्या है और इस गाने में कौन सी एक्ट्रेस जो है वो परफॉर्म कर रही है. तब तक जो है इस जबरदस्त हिट गाना जो है वो आप इंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर. और बाकी थोड़ी सी देर में जितने विनर्स हैं उनके नाम जो है वो मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ. स्टे ट्यून्ड जी बिंदास.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.
2: अभी बजाएगा ना भिड़ो.
3: टिंडर एंड आयल दोनों पे मैच हुआ प्रोफाइल. बायो भी थोड़ा हटके था एंड रेडियस विद इन अ माइल.
4: 52 राइट स्वाइप्स के बाद ये करिश्मा हुआ.
5: आई वाज टोटली वर्थ इट
4: जिंदगी बदलने आई मेरी जिंदगी में मुस्कान दुआ.

0: कौन चुकी
1: हाँ हाँ प्लीज बताओ, मुझे भी जानना है ये राज ताकि मैं चैन से मर सकूं।
2: आगे

किसी से था मुझे दूजा ही कोई मिल गया नियत जरा बदल गई मैं भी जरा बदल गया

0: 100% harar.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
4: इन एसोसिएशन विद
3: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

हल्ला तो देखो होगा ही जब ओ हेलो धूम में हम सब धूम मचाएंगे एंड बहुत सारा फन करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए बिंदास मॉर्निंग लेकर आ गई हूं, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक मॉर्निंग्स को जो है मैं बिंदास बना रही हूं। एंड मैंने ना थोड़ी देर पहले आपको एक गाना सुनाया था, मतलब गाने का एक पार्ट सुनाया था, और आपको गेस करना था कि यार ये जो है कौन सा गाना है एंड इस गाने में परफॉर्म किसने किया है। सो जरा एक बार वो आपको मैं वापस सुना देती हूं कि मैं किस गाने की बात कर रही हूं।

हाँ जी, वही गाना है जिसे सुनने के बाद सबको एकदम फेस्टिव वाइब आ जाती है। फेस्टिव वाइब्स देख रहे हैं, फेस्टिव वाइब बोला है मैंने। इस गाने में परफॉर्म कर रही है रणवीर सिंह के साथ उनकी वाइफ यानी दीपिका पादुकोण, एंड 30 किलो का लहंगा पहन के यानी 30 केजी का लहंगा जो है, सिर्फ लहंगा, सिर्फ घाघरा जो है वो पहन के, उसके ऊपर से ज्वेलरी, उसके ऊपर से इतने हार्ड स्टेप्स जो है वो किए थे दीपिका ने, एंड इट इज अमेजिंग। और ये गाना है नगाड़ संग ढोल बाजे, एंड इसकी कोरियोग्राफी भी बहुत ही अमेजिंग तरीके से की गई थी। सो अपने घाघराज, अपनी चोलीज, अपने लहंगे जो है वो तैयार कर लीजिए ए हालो धूम इवेंट के लिए जो हम इस फ्राइडे को करने वाले हैं। एंड इसकी जो है कपल टिकट्स मैं दे रही हूँ, और इसका जवाब जो है, जो ये सवाल मैंने किया था, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद यूसुफ खान जी ने, एंड श्वेता जी ने, सुनील जी ने, रहमान जी ने, सैयद नोमान जी ने, सतीश जी ने, बहुत बिल्कुल सही सही आंसर जो है वो दिए हैं। लेकिन हमारे जो है विनर्स अगर मैं कहूँ तो वो हैं पार्थ जी एंड सतीश जी। कंग्रेचुलेशंस, एक ऑफिशियल मैसेज जो है वो हमारे नंबर से आपको आ जाएगा कंफर्मेशन का, एंड फिर हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगा कि आप अपने पासेस जो है वो कब कब कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे शेयर करना ना भूलें। बाकी आप सब जिन्हें अभी जो है मतलब अनफॉर्चुनेटली जो है टिकट नहीं मिल पाई है, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि सिमरन के शो में यानी इवनिंग शो में, जबरदस्त इवनिंग में भी आपको मौका मिलने वाला है कि आप जो है ये टिकट जीत सके। एंड अगर आपको अभी के अभी जो है जीतने के लिए कुछ करना है सो इंस्टाग्राम पे जाइए, वहां पर हमने एक रील पोस्ट की है, वहां पर जाके आप उस रील को शेयर करके, कॉमेंट करके जो है टिकट्स जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है, सो 3311063 पर मैसेज कीजिए, जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए, एंड वहां जाकर भी आप टिकट जीत सकते हैं। बाकी अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, आई हेट लव स्टोरीज से बहारा बहारा। इंजॉय करके आइए मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, और कहते रहिए जियो पिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: OLF शॉर्ट ब्रेक।
0: पहला जादू।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ
0: इन एसोसिएशन विद
1: चूज बीमा थर्ड पार्ट ऑफ लायबिलिटी टुडे। स्टे क्लेम फ्री टू एंजॉय 7% कैशबैक। विजिट bima.com.qa। बीमा फॉर योर पीस ऑफ माइंड। TNC अप्लाई।

देखिए जी, अब आपकी इस सजनी की आपको याद सताएगी कल सुबह 6 बजे तक, क्योंकि मैं यहाँ से जा रही हूँ एंड अब हमारी मुलाकात होगी कल सुबह सुबह 6 बजे बिंदास मॉर्निंग में। जी, आपकी एक और सी छोरी, आपकी कशिश जो है आपको आज एंटरटेन कर रही थी सुबह से लेके अभी तक बिंदास मॉर्निंग में, लेकिन अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। सो आप जो है स्टे ट्यून रहो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, अमेजिंग गाने आपके लिए आ रहे हैं, कॉन्टेस्ट आ रहे हैं जिससे आप जो है बहुत अमेजिंग अमेजिंग टिकट जीत सकते हो। बाकी जाते जाते मैं वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि खाना खाते रहो, पानी पीते रहो, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाओ, अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो एंड मुझे जो है याद करते रहो। बाकी रेडियो ऑलिव की इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लो ताकि आपसे कोई भी छोटी बड़ी अपडेट जो है वो मिस ना हो। फिलहाल जाते जाते आपको मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक बंजारी डुओ के बरसात गाने के साथ जो है वो छोड़े जा रही हूँ। स्पाइडर मैन के अगर आप फैन है तो उसके प्रमोशन में भी ये गाना काफी यूज हुआ था, तो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना यूज करो, मतलब रील्स में यूज करो, वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, tara bye bye take care।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. और आज एक यू नो थॉट से शुरू करते हैं. हम लाइफ में ना एक स्ट्रेंज प्रेशर लेके चल रहे होते हैं. मुझे सब पता होना चाहिए वाला प्रेशर, करियर किधर जाना है, पैसे कब सेव होंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, फर्स्ट ईयर के बाद क्या करना है. अरे भाई, लाइफ कोई गूगल मैप थोड़ी है कि डेस्टिनेशन डालो और टर्न पे ब्लू लाइन मिल जाएगी. कभी कभी ना आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पता होना चाहिए. पूरा स्टेयरकेस नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहली सीढ़ी तो दिख रही है ना, बस उस पर चढ़ जाओ. और ऑनेस्टली लाइफ में क्लैरिटी भी अक्सर मोमेंट के बाद ही आती है. पहले चलिए, फिर पता चलता है कि जाना किधर है. और लाइफ मस्त का रिमाइंडर भी यही है कि आपको पूरी लाइफ आज फिगर आउट नहीं करनी, बस आज का दिन थोड़ा सा बेटर बनाना है. सो यू टेल मी कि आज आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करने वाले हो, या जो कल नो थोड़ा सा जो चीजें ठीक नहीं थी उन पर फोकस करने वाले हो. बिग रिजोल्यूशन नहीं, बस वन स्मॉल विन चाहिए आपको. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है लाइफ मस्त है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस।

0: example of what happens when an actor chooses characters over conventional stardom. ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आप उनकी वर्थ देख लीजिए या और भी कोई मूवी में परफॉर्मेंस देख लीजिए. ऑनेस्टली बॉलीवुड में हम हीरो को याद रखते हैं, लेकिन कभी कभी फिल्म का वो एक कैरेक्टर याद रह जाता है जो टेक्निकली साइड में था. संजय मिश्रा का एप्पल सिंह वाला कैरेक्टर याद है आपको, मसान याद होगा, या फिर आंखों देखी आपको याद होगी. ये वो एक्टर्स हैं जो स्क्रीन पर आते हैं और सडनली आप बोलते हो कि ओके अब सीन इंटरेस्टिंग है. एंड दैट्स अ ब्यूटिफुल लेसन इवन आउटसाइड सिनेमा. हर जगह ना सेंट्रल स्टेज पर होना जरूरी नहीं होता, कभी सपोर्टिंग रोल भी बहुत ज्यादा यादगार रह जाते हैं. सो आज का क्वेश्चन है कि बॉलीवुड का वो कौन सा सपोर्टिंग एक्टर है जो आपको लीड एक्टर से ज्यादा याद रह जाता है, जैसे मुन्ना भाई MBBS का वो अरशद वारसी वाला कैरेक्टर. यू टेल मी. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट।

Okay, this is for Marvel fans. Spider-Man घर आ रहा है. Yes, Spider-Man Brand New Day का जो थिएटर रन है उसके बाद डिजिटल विंडो पर आ चुका है. सो अब एक पुरानी डिबेट फिर से अलाइव है, बिग स्क्रीन या बिग सोफा. थिएटर में बड़ी सी स्क्रीन सराउंडेड बाय साउंड और ऑडियंस का रिएक्शन, और घर पर आप अपने बेस्ट सोफे पर अपने पॉज बटन के साथ, अपने ब्रेक्स के साथ, और सबसे इम्पोर्टेंट एक मिनट चाय बनाकर आती हूँ वाला ब्रेक. सो सुपर हीरो मूवीज का ना रियल मैजिक क्या है? कुछ फिल्म्स जेन्युइनली बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस के लिए बनी होती हैं. सो आपको क्या लगता है, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, एवटार जैसे जो मूवीज हैं वो थिएटर में देखना चाहिए या फिर गुड टीवी प्लस गुड साउंड सिस्टम कैन कम्पीट दैट? और बाय द वे ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्पाइडरमैन अब OTT पर आ रही है. आप मूवी थिएटर के लिए जाते हैं या पॉपकॉर्न के लिए, ये भी जरूर बताइएगा. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है.

0: Story of the day. Story of the day. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, the angry young man अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हो लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट नाउ ओपन एट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस कराफा
3: ऑल दैट यू नीड

0: सो आज ना किताबों की दुनिया में एक अनयूजुअल मोमेंट था. बेस्ट सेलिंग ऑथर है जेफरी आर्चर का फाइनल नॉवल, उनका ऑफिशियली आज लॉन्च था, वो पब्लिश हो रही है. एंड उन्होंने खुद कहा कि फाइनल नॉवल आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ स्टोरी टेलिंग. और उन्होंने एक फैसिनेटिंग डिटेल शेयर की, 1.5 लाख वर्ड्स और मोर देन 20 ड्राफ्ट्स. मतलब हम रीडर बुक खोलते हैं चैप्टर 1 चैप्टर 2 और बोलते हैं कि वाह यार क्या स्टोरी है, पर राइटर की साइड पता है क्या है, 20+ वर्जन्स हैं. एंड दैट्स व्हाट आई लव क्रिएटिविटी. द फाइनल जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही एफर्टलेस दिखता है, पर उसके पीछे बहुत मेहनत होती है. देयर इज़ यूजुअली अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. और इस किताब में जो आज रिलीज हुई है बहुत ही ब्यूटिफुल थाट है. इज दिस रियली इज योर फाइनल बुक, सो वॉट डू यू वॉन्ट टू लीव बिहाइंड. मतलब नॉट जस्ट एज अ राइटर, एज अ पर्सन अगर मैं पूछूं, सो अगर आपको पता हो कि दुनिया आपको आपकी एक ही क्रिएशन के लिए याद रखेगी, तो आप क्या क्रिएट करना चाहोगे? कोई किताब, कोई गाना, कोई बिजनेस, कोई घर, या सिंपल एक ब्यूटिफुल सी मेमोरी? टेल मी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. ये है रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर. Song of the Hour. Yeah, guys.

पीछे बावरा सा मन, बावरा सा मन। आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सो दिस इज फॉर यू लेडीज, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है, क्योंकि भाई वापस आ गया है द ज़िगज़ैग हेयर बैंड. सो वो प्लास्टिक वाला जो लेट 90s और अर्ली 2000s में ऑलमोस्ट हर स्कूल और कॉलेज गर्ल के पास होता था. एंड नाउ पेरिस फैशन वीक में गिगी हैडिड वॉज स्पॉटेड वियरिंग द नॉस्टैल्जिक ज़िगज़ैग हेयर बैंड आफ्टर म्यू म्यू स्प्रिंग 2027 शो. एंड सडनली दिस टाइनी एसेसरी इज हैविंग अ वेरी सीरियस फैशन कमबैक. जो हेली बेबर और बेला हैडिड हैव ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ द रिवाइवल. सो फैशन का ना एक रूल समझ लीजिए, नेवर थ्रो एनीथिंग अवे. ठीक है, मतलब मैं तो ये बहुत करती हूँ कि नहीं अब तो ये फैशन में नहीं है या ये पुराना दिखने लग गया, इसको हटा देते, क्योंकि 15 साल बाद वोग उसे ट्रेंड बनाकर वापस लेकर आएगा, आई एम श्योर. सो 2000s का वो हेयरबैन, बटरफ्लाई क्लिप्स, टाइनी सनग्लासेस, लो राइज जीन्स, सब वापस आ रहा है. सो यू टेल मी कि कौन सा 2000s का ट्रेंड है जो आप हैप्पीली वापस चाहते हो, और कौन सा ट्रेंड देखकर आप बोलोगे कि प्लीज लेट द पास्ट स्टे इन द पास्ट. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम, नंबर है 3311063. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी. कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में. फास्ट, इजी और रिलायबल. विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप.
1: दिस इज कैलाश खेर एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स फर्स्ट हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव.

0: इम्पैक्ट जरूरी है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है भाई, हर टीम में एक स्टार नहीं होता, कभी कभी वो पर्सन जो धीरे से काम कर रहा होता है एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सो टुडे लेट्स प्ले यू नो हु स्टोल द मूवी। आपका फेवरेट सपोर्टिंग कैरेक्टर कौन सा है? यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं फॉर लॉट ऑफ पीपल जो मतलब ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल सेकेंड्स में याद आ जाएंगे। सो मूवी का नाम भेजिए, कैरेक्टर का नाम भेजिए और हम देखते हैं कि किसने हीरो को कॉम्पिटिशन दे दिया है। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063। यू आर लिस्निंग सुपर हिट गाने सिर्फ और सिर्फ रेडियो ऑलिव पर। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas।
2: अपनों को पैसे भेजना हुआ और भी आसान। अलदार एक्सचेंज का वीजा डायरेक्ट सीधा आपके परिवार के बैंक अकाउंट में।

सो फैशन ट्रेंड्स की प्रॉब्लम पता है क्या है, आप एक ट्रेंड समझते हो तब तक दूसरा आ चुका होता है. आज थोड़ी सी लग्जरी, कल जो है कुछ और होगा, परसों रोमांटिक ड्रेसिंग, फिर सडनली 90s बैक और वार्डरोब खोलकर हम कहेंगे कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए नहीं है. मे बी दैट्स वाई पर्सनल स्टाइल इज मोर इंटरेस्टिंग देन ट्रेंड्स, यू नो. सो मैं क्या करती हूँ ना, मैं कुछ ऐसे कपड़े लेती हूँ जो एवरग्रीन हो, मतलब लूज, ओवरसाइज्ड, जो मुझे लगे कि यार कभी कुछ तैयार होने का मन नहीं है तो मैं ये पहन सकती हूँ, या कभी ऐसा लगे कि कुछ ऐसी ड्रेसेस जो बहुत ही क्लासी हैं हम कहीं पर भी पहन सकते हैं. सो उससे क्या लगेगा आपको कि आपको बार बार कपड़े खरीदने का मन नहीं करेगा. सो वट एवरी वन इज वियरिंग उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पर्सनल स्टाइल खुद होगा. सो वट फील्स लाइक यू, मे बी योर थिंग्स यू नो आर लाइक सारीज, मे बी वाइट शर्ट, स्नीकर्स, गोल्ड ज्वेलरी, मे बी ब्लैक, जो भी हो, पर आपको बार बार ऐसा नहीं लगेगा कि यू डोंट हैव एनीथिंग. मे बी यू डोंट केयर अबाउट फैशन एट ऑल एंड योर सिग्नेचर स्टाइल इज कम्फर्ट फर्स्ट, बाकी दुनिया बाद में. सो यू टेल मी कि आपके वार्डरोब का वो वन पीस क्या है जो ट्रेंड हो या ना हो, No, you will wear it 5 years from now too. You are listening Radio Olive. Main hoon Muskan. Stay tuned. Jio. Bindas. Radio.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

हमने ना कोई एक एम्बेरसिंग चीज की होती है सालों पहले, ठीक है, किसी को कुछ याद नहीं है बट आपके दिमाग को सब याद है। गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। मतलब मॉर्निंग तो एक्चुअली खत्म हो गई है बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है जब तक आपसे बातें करती हूँ ना तब तक एनर्जी एकदम मॉर्निंग वाली रहती है। शैल वी रीप्ले दैट मेमोरी अगेन? अच्छा, यू सेड द रॉन्ग थिंग इन अ मीटिंग और आपने कुछ गलत बोल दिया, कोई गलत नाम ले लिया, ठीक है, वेव बैक एट समवन हु डजंट वेविंग एट यू, किसी को मैसेज भेज दिया गलत, ठीक है, और ब्रेन जो है उसको याद है सब कुछ, ये 8-10 साल पुरानी बात है। व्हाई डज आवर माइंड मतलब होल्ड ऑन टू दीज टाइनी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स सो स्ट्रांगली? सो साइकोलॉजिस्ट ना इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमको लगता है कि हमें ना सब याद रखते हैं बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम खुद ही खुद को इतना हाईलाइट कर रहे होते हैं। इन रियलिटी मोस्ट पीपल आर फार टू बिजी थिंकिंग अबाउट देयर ओन ऑकवर्ड मोमेंट्स, सो मे बी दैट एम्बैरेसिंग मोमेंट यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट नोबडी एल्स रिमेंबर्स एंड ऑनेस्टली दैट्स क्वाइट फीलिंग, यू नो। हम जिस मोमेंट को अपनी लाइफ का बिगेस्ट एम्बैरेसमेंट समझ रहे होते हैं, हो सकता है कि सामने वाला उस दिन के लंच में क्या खाया था उसने वो भी भूल चुका हो। सो आपका वो कौन सा एम्बैरेसिंग मोमेंट है जो आपका ब्रेन है बिना परमिशन के कभी भी रीप्ले कर देता है? सो यहाँ पर मैं सारे फनी कॉन्वर्सेशन सुनने के लिए एकदम तैयार हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। नंबर है

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद

सो एक ब्यूटिफुल लिटिल रिमाइंडर है आपके लिए. लुक अप. नासा के स्काई वॉचिंग गाइड के अकॉर्डिंग आज यानी कि 6th of October में द मून एक्चुअली जुपिटर को टेम्परेरली अकल्ट करेगा. मतलब जुपिटर मून के पीछे जो है वो डिसअपीयर होता हुआ नजर आ सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि आप कहाँ से देख रहे हो, एंड आई विल से कि बट इसको मिस नहीं करना, थोड़ा सा ट्राई करना देखने का आसमान की तरफ. ऑनेस्टली मुझे एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ लगती है, विच इज़ हम स्काई देखते कितनी बार हैं यार. हम सनसेट देखते हैं, फ़ोन निकालते हैं, मून देखा, फोटो खींचा, ब्यूटिफुल क्लाउड्स देखे, स्टोरी बनाई, स्टार्स देखे, कैमरा निकाला. कभी कभी बस फ़ोन पॉकेट में रखो और देखो कि यहाँ पे कोई आपको पिक्चर क्लिक नहीं करनी है, कोई रील नहीं बनानी है, कोई एस्थेटिक कैप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ देखना है आसमान की तरफ. क्योंकि हम इतना स्क्रीन देखते हैं कि एक्चुअल स्काई देखना ऑलमोस्ट भूल चुके हैं. सो आज का क्वेश्चन है कि लास्ट टाइम कब आपने बिना फोन निकाले बस 5 मिनट तक आसमान की तरफ देखा था. यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मुस्कान है आपके साथ और ये है लाइफ मस्त है.

Story of the day. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट

0: अच्छा, अब लाइफ मस्ते को एक ब्यूटीफुल से कॉन्वर्सेशन के साथ रैप अप करते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। ग्रोइंग अप के साथ ना एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो चीजें पहले बोरिंग लगती थी वो सडनली अच्छी लगने लग जाती है। पहले मम्मी सुबह जल्दी क्यों उठना है बोलते थे हम, अब सुबह यू नो हमें चाहिए कि थोड़ा टाइम हो हमारे पास, हम जल्दी उठ जाएं। पहले घर पे रहना बोर हो जाएंगे वाले फील आता था, अब लगता है यार प्लीज प्लान को कैंसिल कर दो, बस घर पे रहना है। सो पहले फैमिली के साथ डिनर हम कहते थे क्यों करना है, पर अब सब एक साथ मिल जाएं बस यही सोचते रहते हैं। पहले एक्साइटमेंट चाहिए था लाइफ में और अब कभी कभी बस पीस चाहिए। एंड मे बी दैट्स वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग अबाउट ग्रोइंग अप, योर डेफिनेशन ऑफ गुड लाइफ जो है वो चेंज होने लग जाती है। सो टुडेज फाइनल यू नो लाइफ मस्ट है क्वेश्चन इज कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो पहले आपको बहुत बोरिंग लगती थी बट आज आप जेन्युइनली उसे इंजॉय करते हैं। मे बी चाय और एक शांति भरा सुकून, मे बी अर्ली मॉर्निंग्स, मे बी रीडिंग, मे बी स्टेइंग होम, मे बी सिंपल फैमिली डिनर, मे बी जस्ट हैविंग एब्सोल्युटली नथिंग टू डू। क्योंकि समटाइम्स ग्रोइंग अप इजंट अबाउट बिकमिंग मोर सीरियस, इट्स अबाउट लर्निंग व्हाट एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

0: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: This is Deepika Padukone.
2: Deepika Padukone.
1: Radio Olive 106.3.
3: I'm a number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और ओलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सदैव। तो चलिए कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, बांध रखिए तो और कसके बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हम गुफ्तगु करेंगे, बातें करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और यही बोलते हुए याद दिलाते हैं कि 3311063 यह है हमारा व्हाट्सएप नंबर। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी कर दीजिए मैसेज और बताइए क्या हाल है। चलिए शुरू करते हैं ओलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।
1: पूरे देश को पगला दूंगा, अभी तो कुछ पेश किया है। सुनो
2: money follows my brother.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा रनर्स हाई के बारे में। तो क्या है बेसिकली एक रनर्स हाई और उसके पीछे का साइंस क्या है करके। सो रनर्स हाई जो है एक शॉर्ट एक रेयर स्टेट ऑफ यूफोरिया और कामनेस है जो लॉन्ग हार्ड एक्सरसाइज के बाद जो है एक इंसान फील करता है या फिर उसके दौरान फील करता है। ठीक है, काफी जॉयफुल आप फील करते हो, आपके बॉडी को काफी रिलीज महसूस होता है, आप बिल्कुल भी पेन फील नहीं करते हैं और आपका जो वर्कआउट है वो काफी सिंपल और एफर्टलेस लगने लग जाता है। इसका साइंस क्या है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स है बॉडी में जो कैनबी की तरह एक्ट करते हैं, उनका नाम है एंडोकैनबिनॉइड्स। और एंडोर्फिन्स भी जब बॉडी में रिलीज होते हैं तब भी हम ये जो एक्सपीरियंस है उसको कर पाते हैं। और कुछ लोग जो है काफी मिक्स्ड रिव्यूज देते हैं क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सिर्फ एंडोर्फिन्स के कारण ही हम ऐसा फील करते हैं, मगर साइंटिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि भाई उसके साथ साथ एंडोकैनबिनॉइड्स भी जो है इसमें इन्वॉल्व है करके। तो कैसे आप एक रनर्स हाई फील कर सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने 70-80% मैक्स हार्ट रेट के हिसाब से आप दौड़िए और डिस्टेंस तक दौड़िए, यानी कि 30-60 मिनट्स तक आपको जो है एक्टिव रहना है। और कुछ लोगों के लिए 4-5 माइल्स जो है लगते हैं ये फीलिंग आने के लिए। और कोशिश करिए कि आप अर्ली मॉर्निंग दौड़िए। मगर एक चीज मैं आपको यहां बताना चाहूंगा रनिंग से रिलेटेड जो लुसेल बोलेवार्ड में आने वाला है, क्या है जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio Olive Pad. Aane wala gaana, cool song of the year.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा लुसेल 5 के डैश के बारे में, जो अक्टूबर 10 को लुसेल बोलेवार्ड में आने वाला है। तो इस शाम की शुरुआत जो है रेस विलेज में 4:30 बजे होगी, जैसे ही ओपनिंग होगी उस चीज की, जहां पे 1 किलोमीटर किड्स रेस होगा 6 बजे, उसके बाद एक 5 किलोमीटर डैश होगा 7 बजे, और ये पूरा इवेंट जो है 8:30 तक खत्म हो जाएगा, जिसमें अवार्ड सेरेमनी भी और विनर्स को जो गिव अवेज देने हैं वो भी कंप्लीट किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आप एक रनर हैं, रनिंग करना पसंद करते हैं, या फिर अपने आप के लिए एक नया चैलेंज रखना चाहते हैं रनिंग करते हुए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। और यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Story of the day. Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, the angry young man अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
0: Say a hello do with Radio Olive and A2Z Event and Trading Catering.
2: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
0: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
2: Get ready for desi beats, chatpate street food and full on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
0: 6 pm onwards.
2: Book your ticket on Snoonu City or for more info, call 3328-3393.
0: Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive
3: Recharge. This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance dekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक छोटा सा रिमाइंडर मैं आपको देना चाहता हूं। मुझे पहली बात तो ये बताना है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जो है कतर में ड्राइव करते हैं। जस्ट एक रिमाइंडर देना जो है मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देखिए, अनसेफ लेन चेंजेस ना करें और बहुत ध्यान रखें लेन चेंजेस करते वक्त, और उसके साथ साथ जब लेन चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से इंडिकेटर देना ना भूलें, और फोकस और अटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोन यूज करते हुए कृपया गाड़ी ना चलाएं, ध्यान नहीं हटना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूंगा एक और टिप, वो ये है कि किसी गाड़ी के एकदम क्लोज जाने से अपने आप को रिफ्रेन कीजिए, जो एक मेजर रिस्क हो सकता है। और उसके साथ साथ एक दूसरे रोड में एंटर करते वक्त मेक श्योर कीजिए कि रोड जो है क्लियर है और बहुत ही इजीली जो है आप वहां पे ट्रांजिशन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सेफर रोड्स स्टार्ट विद फॉलोइंग द रूल्स, और यही याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% advance देकर अपना gold price lock करें. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। 1950s में अमेरिका में जो है जनरल मिल्स करके एक कंपनी थी जो बहुत ही बढ़िया एक केक रेसिपी जो है देती थी, इजी टू बेक केक रेसिपी जो है लोगों को प्रोवाइड करती थी। कुछ नहीं करना था उसमें, बस उस मिक्स में आपको पानी डालना है, बेक करना है, खत्म। मगर उस टाइम में जो हाउसवाइफ्स थे वो बहुत ऐसे दुखी से हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम जो है एफर्ट नहीं डाल रहे हैं अपने फैमिली को केक खिलाने में, और इसी कारण से उस प्रोडक्ट के सेल्स में जो है बहुत ही बड़ा ड्रॉप आया। तो कंपनी ने क्या किया, उस एक मिक्स में से पाउडर्ड एग्स को हटा दिया और इंस्ट्रक्शंस में डाला कि आपको एग्स क्रैक करके इसमें मिक्स करना है, देन बाकी प्रोसेस कंप्लीट करना है करके, और उसके बाद जो है कंपनी के सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गए। सो बेसिकली साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एफर्ट जस्टिफिकेशन। हमें एक चीज में या फिर एक चीज करने में जब जितना हम एफर्ट डालते हैं उसके एंड प्रोडक्ट को उतना ही ज्यादा हम एंजॉय कर पाते हैं। अगर कुछ करने में हमने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला है और हमें एंड प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल जाता है तो हम उतने हैप्पी नहीं होते, और यही चीज जो है बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, लोगों से एफर्ट डलवाते हैं ताकि एंड प्रोडक्ट जो है उन्हें काफी सेटिस्फैक्ट्री लगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है? तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जालों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई तैयार हो जाइए ब्रूक सीजन के लिए। जी हां, 23 दिसंबर 2026 से लेकर 4 फरवरी 2027 तक जो है रासा ब्रूक में ब्रूक सीजन शुरू होने वाला है, जहां पे विंटर को आप काफी मेमोरेबल बना सकते हैं एक्साइटिंग एक्सपीरियंस के साथ, एंटरटेनमेंट और बहुत ही बढ़िया मोमेंट्स ऑफ डिस्कवरी जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके टाइम के बारे में जो है ऑर्गेनाइजर्स ने बोला कि हम अनाउंस करेंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए और भी डिटेल्स जानने के लिए। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें. विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ.

सभी का फिर से एक और बार स्वागत है, आप सुन रहे हो रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। एक काफी बढ़िया ऑफिस में मेमोरेबल चीज आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो एक बढ़िया उपाय हमारे पास है, वो यही है कि आप रेडियो ऑलिव के टीम को अपने ऑफिस में इनवाइट कर सकते हो एक दिन फन करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, चिल करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एक वर्क डे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो है हमें मैसेज करना है 3311063 पर HL स्पेस आपकी कंपनी का नाम, क्योंकि ये है हैप्पीनेस लॉन्ज जहां पे हम आपके ऑफिस में आएंगे, आपके साथ चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, आपको रिचार्ज और रीएनर्जाइज करेंगे। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3
1: FM. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
0: Sirf number one log. सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट Malabar Gold and Diamonds शोरूम नाउ।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और दोहा जो है सही में एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है कल्चरल इवेंट्स के लिए, साथ ही साथ स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए। और एक बहुत ही बढ़िया स्पोर्टिंग इवेंट जो है दोहा में आने वाला है, विच इज पावर स्लैप। जी हाँ, पावर स्लैप इज कमिंग टू दोहा। और काफी बढ़िया हार्ड हिटिंग एक्शन के लिए जो है तैयार हो जाइए। 19th नवंबर 2026 को अली बिन हमद अल अतिया अरीना में जो है ये इवेंट होने वाला है। इसके टाइमिंग के बारे में जो है डिटेल्स अभी आए नहीं है, वो अनाउंस किए जाएंगे। फिलहाल यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: पे जस्ट 10% एडवांस एट जॉया लुकास टू बुक योर फेवरेट ज्वेलरी नाउ।
3: नाउ वी स्टिल हैव टाइम फॉर द फेस्टिव सीजन।
2: दैट्स एग्जैक्टली व्हाई यू शुड सिक्योर द बेस्ट गोल्ड राइट नाउ। बुक इन एडवांस एट जॉया लुकास एंड प्रोटेक्ट योरसेल्फ from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advanced booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं Radio Olive 106.3.
5: Is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds में सिर्फ 25% एडवांस देकर अपना गोल्ड प्राइस लॉक करें। विजिट योर नियरेस्ट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम नाउ।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई काफी वियर्ड एक खबर जो है मैं लेकर आया हूं आपके लिए। तो मैंने सुना कि बहुत पहले यानी कि सालों सालों बरसों पहले जो है फिनलैंड में रेफ्रिजरेशन ये सब फिगर आउट करने से पहले कि कैसे रेफ्रिजरेटर्स बनाएंगे ये सब फिगर आउट करने से पहले लोग पता है दूध को कैसे सेफ रखते थे उसमें मेंढक डाल के। सुनने में काफी वियर्ड लगेगा काफी ग्रोस लगेगा मगर ध्यान से सुनिए। साइंटिस्ट लोग और रिसर्चर्स लोग जो है वो ये बोलते हैं कि फ्रॉग्स के बॉडी में जो है कुछ नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होते हैं जो सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को जो है भगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमें मिलता है इस अनयूजुअल ट्रेडिशन के लिए। इवन तो आजकल कोई अपने दूध में मेंढक को डाल के नहीं रखता मगर हाँ सोच के देखिए कि कैसे पीते थे यार। मतलब मैं तो नहीं समझ सकता, मेरे तो कॉम्प्रिहेंशन के ही बाहर है ये भाई। नहीं मैं नहीं, मेरा हो गया। देख बहुत खबरें देख ली मैंने आज के लिए बस। अभी फिलहाल आप गाने सुनिए और यही बोलते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया जानी तो क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम में, फॉलो कीजिए हमें, हमारे पोस्ट के साथ, कंटेंट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। और याद रखिएगा, बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करने पर आप चांसेस रखते हैं बहुत ही बढ़िया गिफ्ट जीतने के। तो यही याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे। एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।
0: बिंदास सफारी पर आ गया है साल का सबसे बड़ा ऑफर। गेट रेडी फॉर मैसिव सेविंग्स क्योंकि सिलेक्टेड आइटम्स पर चल रहा है सेल अप टू 50% ऑफ।
2: फुटवेयर गारमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज बैग्स और हाउसहोल्ड आइटम्स सब पर मैसिव सेविंग्स।
0: क्लॉक इज टिकिंग ये यूनिक डील चलेगी सिर्फ 25 अक्टूबर तक। डोंट जस्ट शॉप स्कोर बिग आज ही आओ अपने नजदीकी सफारी आउटलेट पर।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
2: Third party insurance may be a requirement, but with Bima, you get so much more. Get 24/7 roadside assistance with towing, recovery, tire change, fuel delivery, battery boost, and lockout support. Split your payment into 4 installments and stay claim free to enjoy 7% cashback. Plus, get a replacement car for up to 3 days, a one-time airport drop-off, and vehicle inspection transportation. Choose Bima, third part of liability today. Call 800-786 or WhatsApp 740-50555 or visit bima.com.qa. Bima for your peace of mind. TNC apply.
4: Only laga aur ho ja recharge.
5: Olive recharge.
0: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
5: Olive recharge.
6: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds mein sirf 25% advance lekar apna gold price lock karein. Visit your nearest Malabar Gold and Diamonds showroom now.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाय बाय गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं, पार्टी तो बाकी है और जबरदस्त इवनिंग्स भी आने वाला है। तो यही बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं और याद दिलाते हैं कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

होए होए, एक नंबर गाने की शुरुआत हो चुकी है शोध नाल। सत श्री अकाल, सिमरन कौर है थोड़े नाल। जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है, 5:06।

0: चार घंटे अपने तुम हो तभी तो कुछ बात है।
1: थोड़ा सीधा साधा हूँ मैं, थोड़ा सा हूँ बैड गर्ल, बेबी आई एम अ बैड बॉय, कैन यू बी माय बैड गर्ल।
0: मैं तो ऑलरेडी बैड हूँ यार बहुत सारी लोगों की नजरों में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के लिए जो कि आपने मेरे आने से पहले मुझे भेज दिए, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजे हैं, जिन्होंने मुझे अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है, सो मेरा नंबर है 3311063। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने जो है वो गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप अपना मुझे प्यार भेज सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके दिल में जो चल रहा है वो भी भेज सकते हैं। इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ नहीं, सब कुछ भेज सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है यार। चलो फिर चको मुसाफिर कैफे से आप ये गाना सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। सो इससे जुड़ी एक बात जो है मैं आपको बताऊंगी वापस लौट के।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। Pages 10% advance at Joya Lucas to book your favorite jewelry now.
1: Now? We still have time for the festive season.
0: That's exactly why you should secure the best gold right now. Book in advance at Joya Lucas and protect yourself from gold price hikes. Plus, if the gold price drops, you get the lowest rate. And the best part, you can do it in-store or with just a click on the Joya Lucas app. Advance booking offers valid until 7th November only. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: Say a hello dho with Radio Olive and A2Z Event and Trading Catering.
3: Doha Walo, get ready to glow, glam up and groove. We are bringing you the ultimate fashion fusion musical night. Throw on your brightest, most colorful festive ethnic wear, grab your favorite accessories and let's light up the dance floor.
2: Aur ultimate music ke liye saath hogi Bollywood ki sensational star Ishita Vishwakarma live.
3: Get ready for Desi Beats, Chatpate Street food and full-on vibes this Friday, 9th October at Regency Hall,
2: 6 p.m. onwards.
3: Book your ticket on Snoonu City or for more info.
4: Call 3328-3393. Hi everyone, I'm Arman Malik.
5: Arman Malik.
6: I'm number one.
4: 106.3 FM, Radio Olive, Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोया लुकास जोया लुकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
10: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: Rogue. Sunte în number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM. टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हल्दार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हल्दार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हल्दार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
5: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

दिल्ली। कौन कौन रिलेट कर पा रहा है? सबकी बैंड ये दिल्ली बजाता है, दिमाग खेल जाता है। वाह क्या राइम किया मेरे। मुसाफिर कैफे देखा? मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सभी ने देखा, नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही प्यारी सीरीज जो है ये है। सो या अब विक्रांत मासी की बात करें, विक्रांत मासी जो है वो इसमें आपको पता है कि मुसाफिर कैफे का उनका सीन जो रहता है, लेकिन रियल लाइफ में भी विक्रांत मासी और उनकी वाइफ जो है मिलकर शीतल ठाकुर रियल लाइफ में दो मुसाफिर कैफे जो है वो खोलने वाले हैं। एक धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में होने वाला, एक उत्तराखंड में होने वाला। मतलब जो वाइब आप लोगों ने मुसाफिर कैफे टीवी में फील की थी वो आप रियल लाइफ में फील करने वाले हो। यार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी यार ये मुझे, है ना, क्योंकि हम सब लोग जो थे मुसाफिर कैफे देखने के बाद ये देख रहे थे कि भाई यू नो क्या मतलब ऐसा भी कोई कैफे होता है क्या। फिर बहुत सारी रील्स वायरल हुई थी, यहाँ पे शूट किया गया मुसाफिर कैफे, दिस एंड दैट। सो या अभी फाइनली रियल लाइफ में हम मुसाफिर कैफे देखेंगे यार।

0: मुसाफिर कैफे सीरीज नी फिल्म थी आई गेस।
1: है काश के हम होश में अब आने न पाए।
0: मैं आजकल इतना कंटेंट जो है कंज्यूम कर रही हूँ, सीरीज मूवीज, याद ही नहीं रहता कि क्या सीरीज और क्या मूवी है। एंजॉय करिए गाना, एकदम गर्मी में ठंडी हवा का झोंका है ये गाना।

0: क्यों घर का क्या हाल बना रखा है तुमने तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते कहाँ है सब
1: कारपेट के नीचे सीलिंग के जालों में और दीवार पर
0: क्या कॉकरोचेस मकड़ी धूल और जाले अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर
1: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ और हाँ मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है
2: फेस्टिविटीज की प्लानिंग इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेस आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है यू गेट द लोअर रेट है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: Zabardust evening. Make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

आ गई अपने अपने दोस्तों की याद. कोई चीज परमानेंट नहीं है यार लाइफ में, यादें रह जाती हैं, लेसन मिल जाते हैं. मैंने पढ़ा था कहते कि किसी को दो पैसे दे दो लेकिन अकल मत दो, क्योंकि वही अकल वो तुम पे लगाने वाला है. मैंने तो दोनों दे दिया. 5:50 40 सेकंड.

0: All right, so मौसम जो हमारे साथ फरेबी नहीं कर रहा है एटलीस्ट शाम को. रफ्तार से चल रहे हैं. ये गाना आ गया आपके लिए, इंजॉय करो. अगला घंटा जो है आपके लिए कुछ फ्री में मिलने वाला है आपको. ए हालो धूम की टिकट.
1: यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
2: दिल पर देती नू तन्नत दारू.

ना लास्ट ईयर जब बोर्ड शो हुआ था है ना, हम कहीं पे यानी कि टॉप फ्लोर पे कहीं पे बैठे थे एकदम हाईएस्ट पे, और वहां पर जो लास्ट डे था जो फायरवर्क्स होते हैं भाई, वो फायरवर्क्स हमको आंखों के सामने दिख रहे थे। मेघा जी सुनियो की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल। सो कदर बोर्ड शो जो है वो एक बार फिर से आने वाला है, और इसकी टिकट जो है वो सेल पे स्टार्ट हो चुकी है, सेल पे जा चुकी है। तो आप जो है वो स्टार्टिंग प्राइस जो है इसका 50 कतरी रियाल है, जो कि काफी कम है यार। सो आप लोग टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं, और ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है अभी तो नवंबर से, नवंबर बस आ गया यार, अगला महीना है ना, 4 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक ये ओल्ड दोहा पोर्ट में होने वाला है। बहुत ही मजा आने वाला है, 3rd edition है ये। सो या मतलब इसके फायरवर्क्स और जो हॉल वहां पे बनता है ओल्ड दोहा पोर्ट, तो वैसे भी बहुत सारे लोगों की बहुत ज्यादा फेवरेट जगह है, क्योंकि वहां पर वेंट आउट सेशंस करने का जो मजा आता है, ओहो हो, वहां पर जो चुप रह के निहारने का मजा आता है, वहां पर जो दोस्तों के साथ बैठने का मजा आता है, ओए होए वो अलग ही लेवल है यार। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास। और मौसम को सोच रही थी इस गाने को सुनते सुनते यार, हाँ छड्डो द वन। ये फिल्म देखी है यार मैंने, अच्छी है, देख सकते हो आप भी।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: घर का क्या हाल बना रखा है तुमने? तो कहा था तुम अकेले नहीं रहते, कहाँ है सब?
2: कारपेट के नीचे, सीलिंग के जारों में और दीवार पर।
1: क्या कॉकरोचेस, मकड़ी, धूल और जाले? अभी के अभी कॉल करो 7770525 पर।
2: ग्रीन तारा कॉन्ट्रैक्टिंग एंड सर्विसेज, प्रोफेशनल क्लीनिंग और इको फ्रेंडली पेस्ट कंट्रोल के एक्सपर्ट्स, एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के साथ, और हाँ, मेड और कुक सर्विस भी अवेलेबल है।
3: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 नवंबर तक। देन इफ द प्राइस इंक्रीजेस एट द टाइम ऑफ परचेज, आप पा सकते हैं द बुक्ड रेट। और अगर गोल्ड प्राइस ड्रॉप होती है, यू गेट द लोअर रेट। है ना इनफ रीजंस टू स्टार्ट द सेलिब्रेशंस ऑलरेडी? तो आज ही अपना प्राइस लॉक्ड गोल्ड सिक्योर्ड कीजिए विद मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
4: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 एफएम रेडियो ओलिव, जियो बिंदास।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ जबरदस्त इवनिंग, मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
8: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार हलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में, फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए हलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए हलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे,
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

जाने अब क्या होने को है, कितना क्या सोचना यार, सोचने से रुक थोड़ी ना जाएगा, जो होना है वो हो जाएगा। कभी कभी तो मैं ऐसे बातें करती हूँ, मजा सा आ जाता मुझे करके कि सिमरन कौर ये तू बोल रही है। आई नो राइट। जहां पर आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स होंगे, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, डांस होगा, मस्ती होगी, बस आप अपने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के आ जाइएगा जो कि आपने रखे हुए थे कब से कि यार कैसे कहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पर जो है वो देसी बीट्स होने वाली है, तो बहुत सारा मजा आने वाला है क्योंकि ये आपके लिए रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स लेके आ रहे हैं। बट उसके अलावा जो हमारे रेडियो ऑलिव के लिसनर्स हैं, हमने उनके लिए भी सोचा है कि कुछ हमारे लकी लिसनर्स जो हैं फ्री कपल पासेस जो है वो जीते। तो मेरे पास एक कपल पास है आज, और आप अगर ये जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने मुझे 15 से 30 सेकंड में जो है एक रीजन बताना है कि आप ये कपल पास क्यों डिजर्व करते हैं। सो क्विकली आप मुझे अपना वॉइस नोट भेजिए, हे सिमरन अपना नाम बताइए और 30 सेकंड, बड़ी लंबी कहानी नहीं छेड़नी, इतना ज्यादा नहीं सुनती मैं, ठीक है? ओके, सो 3311063 पे आप भेज दीजिए। एंड उसके अलावा अगर आपकी किस्मत यहाँ पे नहीं बनी तो आप हमारे रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पे जाकर एक रील और हमने पोस्टर भी अपलोड किया है वहां पे लाइक कमेंट एंड शेयर करके भी आप फ्री कपल पास जीत सकते हो।

Story of the day. Story of the day. Story of the day. एक टाइम में कहा जाता था, the angry young man अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं, विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड की करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनके स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस, दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: से ए हालो धू विद रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट एंड ट्रेडिंग केटरिंग।
2: दोहा वालो, गेट रेडी टू ग्लो, ग्लैम अप एंड ग्रो। वी आर ब्रिंगिंग यू द अल्टीमेट फैशन फ्यूजन म्यूजिकल नाइट। थ्रो ऑन योर ब्राइटेस्ट मोस्ट कलरफुल फेस्टिव एथनिक वेयर, ग्रैब योर फेवरेट एक्सेसरीज एंड लेट्स लाइट अप द डांस फ्लोर।
1: और अल्टीमेट म्यूजिक के लिए साथ होगी बॉलीवुड की सेंसेशनल स्टार इशिता विश्वकर्मा लाइव।
2: गेट रेडी फॉर देसी बीट्स, चटपटे स्ट्रीट फूड एंड फुल ऑन वाइब्स दिस फ्राइडे 9th अक्टूबर एट रीजेंसी हॉल,
1: 6 PM ऑनवर्ड्स।
2: बुक योर टिकट ऑन स्नूनु सिटी और फॉर मोर info call 3328 3393।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: तरह क्यों डर रहा है बेबी? मेरा धक धक होता है जब मेरा वेइंग स्केल थोड़ा सा ऊपर दिखाता है यार। आपका धक धक कब होता है यार? सिमरन कौर तोडे नाल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए। बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया यार ए हालो धूम के लिए, राइट? सो रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स जो है आप लोगों के लिए लेकर आया है इस 9th अक्टूबर को रीजेंसी हॉल में। एकदम घाघरे वाघरे पहन के एकदम गरबा स्टाइल में मजे आ जाएंगे यार आपको करने में। डांस और क्या कहते हैं, बहुत सारा म्यूजिक जो है वो होने वाला है, और उसके साथ साथ यू नो इशिता विश्वकर्मा जो कि बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार है वो भी होने वाली है स्टेज पर, आपके लिए गाएंगे और आप नाचिए, मस्त म्यूजिक जो है वो आपके लिए चलता रहेगा। बट फ्री टिकट्स तो हम रेडियो ऑलिव पर जो है वो दे रहे हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे भी, हमारे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे भी हम दे रहे हैं। बट उसके अलावा आप टिकट्स जो है अपने दोस्तों के साथ फटाफट से बुक कर लीजिए, क्योंकि फटाफट से टिकट्स जो है वो सब लोग बुक कर रहे हैं स्नूनू सिटी पे जाके। आपका स्नूनू का एप्लीकेशन है ना, उसमें स्नूनू सिटी का ऑप्शन होगा, तो वहां पे जाके ए हालो धूम करके आपको दिखेगा। फटाफट से टिकट जो अपनी बुक कर लीजिए, नंबर मैं आपको बता देती हूँ अगर आपको डिटेल्स चाहिए इसके रिगार्डिंग, और तो 333-283-93 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। सो इस 9th ऑफ अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में मिलते हैं आपसे मस्ती करने के लिए। बाय द वे मेरे कपड़े अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, बट ठीक है कर लेंगे यार। और आप लोग बताओ क्या सीन है, आपके कपड़े रेडी हैं?
1: हेलो सिमरन, गुड इवनिंग,
0: वेरी गुड इवनिंग।
1: रेनू ही यार।
0: हाय रेनू।
1: ट्रेडिशनल कपड़े रखे हुए हैं सूटकेस में।
0: अच्छा।
1: और बहुत सारे रखे हुए हैं तो इस बहाने वो कपड़े पहनने को मिल जाएंगे और इंजॉय कर लेंगे। सो मैं और मेरे हस्बैंड डिजर्व करते हैं, प्लीज गिव पास, थैंक यू जियो बिंदास।
0: बधाइयां में जाएंगे तो बहुत सारे पटाखे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, कल का शो भी ध्यान से सुनिएगा सुबह का और शाम का, टिकट्स आपको मिली जाएंगे, नहीं तो हमारे सोशल मीडिया पे जाके टिकट्स जीत लीजिए, और नहीं तो बुक तो कर ही लो यार।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये गाना

टफ काम और भी आसान। कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।

एक्शन रिप्ले फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें ऐश्वर्या राय की जो लुक थी ना, जोर का झटका, उसमें बियॉन्से से इंस्पायर्ड थी। अगर बात करें इस फिल्म की, सो ये फिल्म जो थी वो हैवीली इंस्पायर्ड थी, जो कि 1985 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी बैक टू द फ्यूचर। और इसको इतना ज्यादा हैवीली इंडियनाइज जो है वो कर दिया गया, उसकी वजह से ये फिल्म डिजास्टर बॉक्स ऑफिस पे रही। सो जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अक्षय कुमार का जो लुक था ना इसमें, सो अक्षय कुमार को फीलिंग थी कि भाई एक तो ये लुक अच्छा नहीं है और ये फिल्म बिल्कुल अच्छा ही काम नहीं करने वाली है बॉक्स ऑफिस में। लेकिन फिर भी इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे विपुल, तो उनके कहने पे उन्होंने कंटिन्यू रखा शूटिंग का। और हम सबको पता है कि इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस में क्या हाल हुआ था। रिप्ले के बारे में और भी बताएंगे, थोड़ा इंतजार, म्यूजिक चालू होना चाहिए बेबी।

0: Pagpagpag. Suntehan number one radio station. Radio Olive. 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
1: सलाम प्रणाम नमस्कार वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ, रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

सिमरन कौर है तोड़े नाल। आज हम एक्शन रिप्ले फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। इस फिल्म का नाम पहले फ्लैश फॉरवर्ड रखा गया था एंड अक्षय कुमार की लुक काफी ज्यादा इसके बारे में जिसकी बात हो रही थी। सो ये जो उनकी लुक थी वो 70s के अमिताभ बच्चन सर से इंस्पायर्ड थी और इनका जो हेयर स्टाइल था वो 70s की जो सुनील दत्त सर की लुक थी वो उनसे इंस्पायर्ड थी। और इसमें जो वो गाना है ना जो कि आजकल हर शादी में बजता और उस टाइम पे हर शादी में बज रहा था, जोर का का, ये वाला गाना जो था ना इरशाद कामिल की उनकी वाइफ के साथ लड़ाई हुई थी तो उन्होंने ना तब लिखा था ये गाना। और इसमें 70s की जो कार थी वो इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में से जो थी बहुत ही ज्यादा पैसों से खरीदी थी क्योंकि इस फिल्म में जरूरत पड़नी थी। यार क्या बात है, इस फिल्म के लिए इतना कुछ गया लेकिन फिल्म फिर नहीं चली यार। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये गाना बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और भी खूबसूरत लगेगा मतलब।

Lindsay. कहो ना प्यार है इसे आप ये गाना सुन रहे हैं. जब आप किसी को बहुत अच्छा ट्रीट करते हो, एकदम बढ़िया ट्रीट करते हो, तो कभी कभी सामने वाला ये समझने लग जाता है कि वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है. वो ये भूल जाता है कि कोई अगर आपको अच्छा ट्रीट कर रहा है, आपकी गलती होने के बावजूद भी, आपके बुरा होने के बावजूद भी, आपने जो गलत किया उसके बावजूद भी, अगर सामने वाला आपको अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो अच्छे वो नहीं, अच्छे ये लोग हैं जो कि आपको अच्छा ट्रीट कर रहे हैं. तो कभी भी किसको फॉर ग्रांटेड जो है वो नहीं लेना चाहिए. समझ जाइए लाइफ में यार, अच्छे लोग हैं तो अच्छों के साथ आप अच्छा रहिए. बिल्कुल मुश्किल ही है ऐसे लोग मिलना यार, जो कि अगर सामने वाला आपको अच्छा ट्रीट कर रहा है तो वो भी आपको अच्छा ट्रीट करें.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
1: फेस्टिविटीज की प्लानिंग, इट्स ऑलवेज क्वाइट ओवरवेलमिंग, बट व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग योर ज्वेलरी परचेसेस, मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स काफी है। अब सिर्फ 25% पे करें एंड लॉक इन योर गोल्ड रेट 8 November tak. Then if the price increases at the time of purchase, aap pa sakte hain the booked rate. Aur agar gold price drop hoti hai, you get the lower rate. Hai na enough reasons to start the celebrations already? To aaj hi apna price locked, gold secured kijiye with Malabar Gold and Diamonds.
2: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ब्यूटीफुल ट्रैक यार. 7:49 ਸੋਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਅਬ ਆਪ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੁਣ. लेकिन जो नए वाले हैं उनको बता देती हूँ, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063. जी हाँ, 3311063. इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए. चलिए अब मैं नाम आपके पढ़ने स्टार्ट कर देती हूँ. मनीष जी थैंक यू सो मच, वर्षा जी थैंक यू सो मच, बद्री जी थैंक यू सो मच, किरण जी थैंक यू सो मच, शिल्पा जी थैंक यू सो मच, फराना जी थैंक यू सो मच, वेंकी जी थैंक यू सो मच, चावला जी थैंक यू सो मच, राहुल जी थैंक यू सो मच, यूसुफ जी थैंक यू सो मच, सूर्य जी थैंक यू सो मच, इदरीस जी थैंक यू सो मच, फारूक जी थैंक यू सो मच, जुल्फी जी थैंक यू सो मच, सादिक हमदान जी थैंक यू सो मच, इस्माइल जी थैंक यू सो मच, श्रीनिवास जी बहुत बहुत शुक्रिया, रीनू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कामरान जी थैंक यू सो मच, रॉबर्ट जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, निशु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, हमजा जी थैंक यू सो मच, हमजा अली मजारी, मोहम्मद वसीफ जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड रितु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. इस्माइल ऑलरेडी मैं आपका नाम जो है वो ले चुकी हूँ. अगला गाना दोस्तों शुरू होने वाला है. अगर आप अभी हाय हेलो ही करते रहोगे तो नाम कब भेजोगे यार. आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, सूरज जी बहुत बहुत शुक्रिया, फातिमा यूसुफ जी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड रियान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, पार्थ जी थैंक यू सो मच, सुनील जी थैंक यू सो मच, सईद जी बहुत बहुत शुक्रिया, संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया, अब्रार जी का शुक्रिया, एंड अग्निवेश जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के नाम ले ले बेटा आप थैंक यू लिख सकते हो ना, फेवरेट वाला इमोजी बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है यार. चलो फिर अगला गाना सुनो, पुराने दिन अरिजीत सिंह की आवाज़.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fresh, fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.
2: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Nanadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Al Khul.
1: अपने लव्ड वंस को पैसे भेजना हुआ और भी इजी। कतर में पहली बार अलदार एक्सचेंज लाया है वीजा डायरेक्ट, जिससे पैसे सीधा फैमिली के बैंक अकाउंट में। फास्ट, इजी और रिलायबल। विजिट कीजिए अलदार की 38 ब्रांचेस या डाउनलोड कीजिए अलदार एक्सचेंज ऐप नाउ।
2: हाय गाइस, दिस इज वाणी भानुशाली।
3: हे, दिस इज लियाना डिक्रूज।
4: दिस इज मी ऋतिक रोशन।
5: हाय, आई एम आलिया भट्ट।
6: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
7: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
8: सिमरन के साथ।
0: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

care orchea femele alea măginuri. सोने की तरह की अलसल सत्रिया काल सिमरन कौर है तड़े नाल देखो लब में खामोशी इस दिन तो नहीं रहेगी 9th ऑफ अक्टूबर को रिजेंसी हॉल में हम आप सबसे मिलने वाले हैं ए हालो धूम में जी हाँ। सो इसके लिए आप स्नूरू सिटी पे जाके टिकट्स बुक कर लीजिए और टिकट बुक करने के साथ अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे देती हूँ, इस नंबर पे आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो 3328-3393। एक बार वापस से बता देती हूँ 3328-3393 इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और इसमें इशिता विश्वकर्मा जो है बॉलीवुड की सेंसेशनल सिंगिंग स्टार होने वाली हैं, देसी बीट्स होंगी, लाइव ऑर्केस्ट्रा होगा, रेडियो ऑलिव एंड ए टू जी इवेंट्स आप लोगों के लिए ये अमेजिंग शाम लेके आए हैं। सो फ्राइडे है, छुट्टी भी होगी 9th अक्टूबर, रिजेंसी हॉल में आप लोगों से मिलते हैं, बट मेक श्योर कि आप लोग जो है वो टिकट्स टाइमली बुक कर दो क्योंकि फिर टिकट्स नहीं मिलेंगी।

0: सुंदरी रेडियो ऑलिव करके इधर ये जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

गाना चलते चलते बैग तो नहीं पैक कर लिए? पिछले कुछ दिन से ना मुझे एक चुल मच रही है। शाम का टाइम होता है जब आप ऑफिस से बाहर निकलते हो, मेरा ऑफिस इस टाइम के बाद जो है वो खत्म होता है, सो मेरा बड़ा मन करता है कि मैं रेगुलर जो है, थोड़े दिन से मेरा ये सीन चल रहा है कि मैं यहाँ से निकलते ही चाय जो है वो पीती हूँ। सो अलग ही लेवल की चुल जो है वो मची हुई, और धीरे धीरे जब मौसम और ठंडा हो जाएगा फिर मेरा क्या हाल होने वाला है मुझे नहीं पता। लेकिन ठंडे मौसम से याद आया, बरूक सीजन जो है वो वापस से रस बरूक में जो है वो हो जाएगा। दिसंबर 23 से स्टार्ट होगा और 4th February तक ये चलने वाला है। सो मैंने एक बार एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस रहा था इसका, रासा ब्रूक नियर जिक्री जो है। सो वहां पर लेट नाइट शाम को बहुत सारी एक्टिविटीज रहती हैं जिसमें बहुत ही कम प्राइस पे आपको जो है वो एंट्री मिल जाती है। 30 कतरी रियाल, 50 कतरी रियाल की ऐसी टिकट जो है वो मिल जाती है। सो मेक श्योर जाने से पहले आप जो है वो टिकट बुक कर लीजिएगा ऑनलाइन। लेकिन वहां पे भी होता है कि आप वहां पे भी टिकट जो है बुक कर सकते हैं। बहुत सारा एडवेंचर थ्रिल और बहुत सारे इवेंट्स और एंटरटेनमेंट डाइनिंग एंड ऑल बहुत कुछ होता है। सो एक बार आपको जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत ही मजे का।

0: Radio Olive Bay. Story of the day.
1: Story of the day.
2: एक टाइम में कहा जाता था द एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन को कोई टक्कर देने वाला था तो वो सिर्फ विनोद खन्ना थे। क्या आप जानते हैं विनोद खन्ना ने अपने बॉलीवुड के करियर की शुरुआत हीरो से नहीं बल्कि विलन के किरदार से की थी। 1968 की फिल्म मन का मीत से लॉन्च हुए विनोद खन्ना सिर्फ उनकी स्क्रीन प्रेजेंस के लिए नहीं बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के लिए भी जाने जाते हैं। सेट पर उनके डिसिप्लिन की वजह से वो फिल्म मेकर की पहली पसंद थे। एक्शन हो या इमोशनल ड्रामेटिक सीक्वेंस दोनों में विनोद खन्ना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते थे। आज बर्थ एनिवर्सरी है बॉलीवुड के उसी चार्मिंग एक्टर विनोद खन्ना की।
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
3: बिंदास इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

डार्लिंग, तो चलू 8:49 स्टूडियो की घड़ी बज चुकी है। सिमरन कौर आपके साथ है, लेकिन जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने बताऊंगी। और उसके साथ साथ

0: थी।
1: ओहो, चलो अब मैं आपको कल मिलती हूँ शाम को 5 बजे, फिर से होती है जबरदस्त इवनिंग्स में मुलाकात। ओवरथिंकिंग मत करिएगा, खाना पीने रहो, ऐश कर दे रहो, चेहरे दे बड़े भाई, स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सकिलो।
2: रेडियो 104.4।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: यू आर लिसनिंग टू कतर्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM Jio Bindas

number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Ab suniye.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. जिया बिंदा.

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: Chandni

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।